it's really, really good for your body if you, when you give up cold drinks. और कुछ benefits expected हैं, कुछ unexpected भी होते हैं. आपकी energy अच्छी होती है, आपकी skin ज्यादा fresh और bright होती है जब आप cold drink पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं. आपकी नींद बेहतर होती है क्योंकि cold drink जो even diet cold drinks के अंदर caffeine होती है, तो it's not good. और उसके बाद आप वजन अगर आप कम करना चाहते हैं तो पहली चीज आपको ये करनी होती है कि आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें. और मुझे अफसोस की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ज्यादातर जिनकी आप चीजों के इश्तेहार आप देख रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, नुकसानदेह. अब तो लिखा हुआ भी होता है, अफसोस की बात यह है कि अब लिखा हुआ भी होता है कि दिस कंटेन्स निकोटीन, और वो छोटा सा लिखा होता है दिस कंटेन्स, मतलब कि दिस कैन बी एडिक्टिव. लोग इतना छोटी लाइन में लिखी हुई है, आम आवाम बस अंग्रेजी में हर चीज, ये ना पता नहीं क्या समझते हैं. हमारी लिटरेसी रेट इतना कम है और वक्त के साथ साथ बेहतरी उसमें आनी नहीं, लेकिन इश्तेहारों में ऐसे अंग्रेजी उन्होंने लिखी हुई होगी कि सब अंग्रेजी पॉज करके पढ़ेंगे जरूर कि हाँ नीचे क्या लिखा है जरा बताना अपनी छोटे फॉन्ट्स के अंदर. तो मैं आपको बता रही हूं कि कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा चीजों के एड्स आ रहे होते हैं टेलीविजन पे, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है. बच्चों को ज्यादातर प्रिवेंट करना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ना पिए. कभी कभी तो खैर सभी भी लेते हैं, ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन ये आपकी सेहतें खराब कर करके इंतहाई अमीर हो गए हैं. खैर अब तो कोका कोला को यूरोप में भी बैन कर दिया गया है, और कि वो खैर वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है. वो इसलिए नहीं कि सेहत के लिए खराब है, वो इसलिए कि उन लोगों को नफरत हो गई है अमेरिका से और अमेरिकन प्रोडक्ट से. तो यूरोपियंस अब जो है वो उसको उन्होंने बैन कर दिया है, क्योंकि जाहिर है वो आप पे इतने सारे टैरिफ्स लगाएंगे तो फिर वो भी बोलेंगे चलो भाई हटाओ अपनी कोल्ड ड्रिंक्स हम जो है. और अब ऐसी वॉर के बाद अब लोग वाकई में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट इतना हो गया कि लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को मतलब दुनिया भर के अंदर अब लोग इसको ना पसंद कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अमेरिका ने भी कोई किसी दुनिया के साथ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया. खैर तो खैर ये हमारी बातें हैं, आप बताएंगे आपका क्या सीन है, आप लोग मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको छोड़कर आपको अफसोस नहीं हुआ, तो हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे. और मेरे पास एक ऐसी खबर है जिनको कुछ लोगों को बड़ा अफसोस हुआ होगा अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर. तो एक एमएलए है और एमएलए के खिलाफ उनके पास एक लोगों ने उनसे पूछा सवाल कि जितनी प्रॉपर्टी जो आपने डीएचए फेज 5 केडीए स्कीम नंबर 1 और हॉक्सबी स्कीम में बनाई हुई थी, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनको लगा कि जी आमदनी इतनी कम है, मगर माशाल्लाह कितना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो वो लोगों ने कहा कि बड़ा खर्चा हो रहा है भाई, इतने सारी उनकी प्रॉपर्टी बनी कैसे. जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो जस्टिफाई नहीं कर सके कितना पैसा उनके पास आ कहां रहा है. ये भी मैं भी हैरान हूं कि भाई एमएनए की तनख्वाह इतनी नहीं, बिजनेस नहीं, लेकिन वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना लिया, मतलब 348 मिलियन रुपीज की प्रॉपर्टी उनके पास थी जो अब वो सीज जो है वो हो गई है. तो खैर ऐसी बात नहीं है, आप प्रॉपर्टी जरूर बनाएं लेकिन फिर उसको जस्टिफाई भी करें. मना नहीं है कि आप जरूर बनाएं प्रॉपर्टी, ये अलग बात है कि कराची के अंदर छोटी सी छोटी जगह पर भी प्रॉपर्टी बनाना इंतहाई शदीद मुश्किल हो चुका है. तो खैर ये वाली हमारी बातें हैं. तो अब आप बताएं कि आप ऐसी कौन सी चीज है इसको छोड़ने का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ. खैर और एक चीज और है, जैसे कि यकतरफा मोहब्बत को छोड़ने का जो है ना वो कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी एक दुखी चीज है. इंसान जो है ना वो बड़ा दुखी हो जाता है जब उसको किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाए.

जिसको आगे आपकी परवाह ही नहीं है, आप उसके लिए दिन में भी तारे देख रहे हैं, चांद में आपको उसका चेहरा नजर आ रहा है वगैरह वगैरह, वो फोन नहीं उठा रहा, आपको इंतहाई शदीद तकलीफ, पूरी रात नींद नहीं आ रही, तो ये वाली अगर सिचुएशन है तो उसको भी आप छोड़ें और आगे बढ़े, इंसान उससे प्यार करे जो आपसे प्यार करता है। तो ये था मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज, और अगर आपने जो है नहीं मेरी बात मानी तो फिर आपका भी यही हाल होगा जैसा कि इस गाने में हो रहा है। और ये वाला जो टाइम है वो है वाइटल साइंस के गाने का, आइए सुनते हैं।

0: हाँ जी, तो रोना मैंने छोड़ दिया, आप भी रोना छोड़ दें यार, गई सो गई यार, छोड़े उसको, बेवफा थी वो है। और वैसे भी आपके मम्मी अब्बू ने वैसे भी नहीं मानना था, तो खैर आगे बढ़े। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पर मौसम रजा का भी मैसेज आया हुआ, आबिद अमीर और आसिफ कमाल। आसिफ कमाल, हमने आपसे पूरी हमदर्दी, अल्लाह करे आपको आगे से कोई भी गाय भेड़ और मुर्गी आंख उठा के नहीं देखे, हमारी दुआएं आपके साथ है। और आबिद अमीर कह रहे कि उनको भी शायद किसी गाय ने मारा है। कौन सी गाय घूम रही है आजकल, मुझे भी मारा है गाय ने, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ पर यकीन करो वो शो नहीं सुन रही। और किस किस ने मारा है आबिद अमीर साहब आपको, हैं कौन लोग मतलब मारे खा रहे हैं आप, मेरे दोस्त होते हुए लोग क्यों मारे खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं हमको बता दें कि मैं गाय को आपने बता दें मैं समिया का दोस्त हूँ, फिर आपको गाय कुछ नहीं कहेगी कि मैं ऐवी कह रही हूँ, खैर मुझे क्या पता। खैर आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे, और ये बताएं कि आपको कभी किसी गाय ने मारा है या नहीं, क्योंकि टॉपिक मुझे यही लग रहा है। ये भी टॉपिक है कि आप कभी दिल टूटा हो और आपको किसी को छोड़कर जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ और हमारे आगे बढ़ गए, मुझे तुमसे अच्छी मिल गई। अगर आपकी ऐसी कोई फीलिंग है तो हमें बता दें। हाँ सिर्फ यही एग्जैक्ट, स्टे टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट, हमें सिर्फ यही इसी टॉपिक पे मैसेज चाहिए। और हमें मैसेज करें, आज ऐसे यहाँ का इंस्टाग्राम भी पेज है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इंड्राइव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: This program is brought to you by
7: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
5: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जाहिर कर चुका होता है। बकती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: FM 247 365.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदाद शुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना सीएनआईसी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 247-365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: कूल किंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, जहां स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं। Ignite under the Ministry of IT and Telecom ला रहा है Prime Minister's Cloud Program for Startups. Tier 1 और Tier 2 के लिए Cloud Expenses पर हासिल करें $13,500 तक की reimbursement और इसके साथ Expert Cloud Advisory की support, जिससे आप अपने Startup को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही apply करें ignite.org.pk पर। Applications जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365.
6: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.
7: Yes everyone, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो क्यों ना सबसे पहले आपको बताया जाए तरीका कार कि कैसे आप ही बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी उठा लें अपना मोबाइल फोन और जाएं उसके राइट मैसेज ऑप्शन में, के ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीके कार को आपने फॉलो करना है, जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, अपने हाल अहवाल बताने हैं, भाई आप लोग सब कैसे हैं, मजे में हैं, गर्मी के सताए हुए हैं या फिर नहीं, सही है मौसम गुजारा है। लेकिन वैसे ऑनेस्टली गुजारा नहीं है, कल तो भाई कराची का जो टेम्परेचर था वो 45 रियल फील्स लाइक टच कर चुका था और जैसे कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी बात थी बिल्कुल वैसे ही रहा। और मजे की बात क्या है कि कराची में बहुत सारी खबरें जो है ना मौसम की सॉरी वो आगे पीछे हो जाती हैं, यानी कि भाई इस दिन बारिश होगी लेकिन नहीं हो पाती, उस दिन होगी नहीं हो पाती, लेकिन ये जो गर्मी की खबर होती है ना मजाल है कि कभी ये खबर गलत हो जाए। ये पता नहीं क्यों कराची में कभी भी गलत साबित नहीं होती। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत बरकरार है और क्योंकि कल हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो भाई वेदर के अकॉर्डिंगली ताजा तरीन खबर यह है कि मंडे टिल वेडनेसडे कराची में शदीद गर्मी, यानी कि जो समुद्री हवाएं चल रही थी वो भी चलना बंद हो जाएंगी। बादल होंगे लेकिन नहीं भी होंगे, यानी कि समुद्री बादल जो आपको कुछ दिनों तक बड़ा रिलीफ फराहम कर रहे थे वो भी नजर नहीं आएंगे, उनका आना जाना लगा रहेगा। इसकी वजह से धूप की शिद्दत ज्यादा होगी तो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत काफी ज्यादा होगा। मौसम बेहतर तब होगा यानी कि जुमरात से मौसम की बेहतरी की तवक्कात मौजूद हैं, जिसके जेर असर कराची में कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है और मौसम खुशगवार हो सकता है। और कल ही मैं एक कल नहीं बल्कि आज सुबह मैं एक देख रही थी एक मैप सॉर्ट ऑफ, कि उसमें यह था कि भाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के दीगर शहरों में और हर तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन एक कराची जो था ना उसको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ था और उसके ऊपर धूप नजर आ रही थी कि यही कुछ सिचुएशन है इस साल कराची की कि हर तरफ हर जानब बारिशें हो रही हैं और बारिशें अभी होंगी भी, लेकिन ये जो हमारा प्यारा कराची है यहां पर ऐसी कोई खबर अभी मौसूल नहीं हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, गर्मियां हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके साथ तो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो जहां इतने दिन वहां एक दिन और सही, कल के दिन का भी हम इंतजार करते हैं क्योंकि कल के बाद से मौसम की बेहतर होने की तवक्कात मौजूद हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। تو بھائی موسم کی تازہ ترین صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہی فراہم کر دی ہے پروگرام کے شروع ہوتے ہی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ریما کا میسج بھی آیا, اسے بھی ہم شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ٹریک اینڈ دین ول بی رائٹ بیک. سجاد علی کی آواز انجوائے کرتے ہیں, پھر واپس آ کر آپ کے میسجز کو بھی شامل کرتے ہیں, کیونکہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا. تو پہلے ایک ٹریک, دین ول بی رائٹ بیک.

All right, so I'm back again. और इसी के साथ साथ भाई आज है 7th of July. So happy birthday to you. अगर आज जो मेरे listeners में से किसी की सालगिरह है तो भाई आपको सालगिरह का ये दिन बहुत मुबारक हो. इसी के साथ साथ आज मंगल है और मंगल वाला दिन जो है वो हम अपने रूटीन में आ जाते हैं ऑब्वियसली क्योंकि इस हफ्ते में दाखिल हुए हमें दूसरा दिन होता है. मंडे वाला दिन सम टाइम्स डिफिकल्ट लगता है आपको बिकॉज अगर आपको ज्यादा छुट्टियां मिली हो तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट लगता है. लेकिन ऑल दो देन वी ऑल आर बैक टू द रूटीन. और आज तो ट्यूजडे है एंड इसी के साथ साथ अभी रियलाइज करें कि अभी तो छुट्टी के दिन आने में काफी सारे दिन पड़े हैं. बिल्कुल भाई काफी सारे दिन पड़े हैं. मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल से भी हमने आपको आगाही फराहम की लेकिन शायद दर्जा हरारत आपको नहीं बताया. और जिस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद होती हूँ ना तो ये वो कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें दर्जा हरारत में इजाफा भी होता है. तो इस वक्त कराची का टेम्परेचर 34 है जबकि रियल फील्स लाइक 41 है. ओ माई गॉड बहुत गर्मी है. तो पिकनिक शेकने के प्लान पर भी रोजाना मैं आपको आगाही फराम करी होती हूँ कि जी इस दिन जाएं उस दिन जाएं ये हफ्ता अच्छा है वो हफ्ता अच्छा है. तो बिल्कुल भाई अभी वैसे भी वर्किंग डे है. सम टाइम्स लोग वर्किंग डे इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि रश नहीं होता और आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी चीज है कि रश ना हो और आप जाएं तो जरा सुकून रहता है. लेकिन वेडनेसडे तक तो बिल्कुल अवॉइड करें. थर्सडे फ्राइडे में भी आप पिकनिक पर जा सकते हैं क्योंकि कराची का मौसम अच्छा हो जाएगा वापस बेहतर हो जाएगा और खुशगवार मौसम में ही पिकनिक मनाना ठीक है. ना जो पिकनिक धूप में हम मनाकर आते हैं ना जो फिर उसके बाद जो हम मुतासर होते हैं वो मुतासर हम तकरीबन लगभग 8-9 महीने तक मुतासर ही रहते हैं हम. और अगर अनकरीबी किसी अपने की शादी है तो भी आप मत जाएं क्योंकि फिर जो आपका ग्लो है वो उतना ग्लोई नहीं रहेगा. तो हम ये चाहते हैं कि आप मुतासर ना हो. ऑल राइट तो भाई 7 जुलाई को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी हम जरा गौर फिक्र करेंगे. अच्छा भाई आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है. ओके चॉकलेट का आलमी दिन. और चॉकलेट तो भाई ऐसा कौन है जो कहता है कि हमें चॉकलेट पसंद नहीं. चॉकलेट हम सबको पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है. और जो हमारे कुछ रिश्तेदार मुल्क से बाहर रहते हैं उनके आने का इंतजार हमें इसीलिए होता है कि जी वो आएंगे और हमारे लिए चॉकलेट लाएंगे. तो भाई चॉकलेट की तो क्या ही बात है. आपको चॉकलेट कितनी पसंद है आप हमें ये भी बता सकते हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जा रहा है. और सिर्फ यही नहीं आज बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं जिस पर बात होगी जिससे रिलेटेड आपसे सवाल भी किए जाएंगे. तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं मेरे दोस्तों. तो अभी हमारे पास वक्त भी ऑब्वियसली मौजूद है तो बहुत सारी बातें अभी आपसे हम करेंगे. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले एक ट्रैक को शामिल करते हैं फिर वापस आकर कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इस पर भी आपसे बात करेंगे सवाल पूछेंगे. तो बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas. Aur aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with me. तो जी हाँ, हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान, और ये साथ हमारा और आपका कायम और दायम है, क्योंकि जी ये साथ है मंडे टिल सैटरडे ये साथ हमारे साथ साथ रहता है। और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम दाखिल हो चुके हैं। बातें तो बहुत सारी हैं जो आपके साथ करनी है, लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में डायरेक्ट बातें नहीं हो सकती। आप सब सोच रहे होंगे कि जी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत यह है कि एक अदर ट्रैक अपने तमाम सुनने वालों को डेडिकेट किया जाता है, और आज बहुत टाइम बाद इस ट्रैक को हम शामिल करेंगे और आपको डेडिकेट करेंगे, और ये वो ट्रैक है जिसे सुनते ही आपको आ जाएगा मजा। तो ये कौन सा ट्रैक है, ये हम आपको करने जा रहे हैं डेडिकेट। सो एंजॉय, एंड देन आई विल बी राइट बैक।

Yes, my friends, the program के second half की रिवायत हो गई कायम, यानी कि एक तो track हमने आपको dedicate कर दिया है और वो track है बसुड़ी, जो कि हम सबका favorite तरीन track है. और आज इस ट्रैक को डेडिकेट करने के पीछे ये वजह थी कि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका और मैंने पसूड़ी को जो है वो शामिल नहीं किया, तो मैंने कहा ठीक है जी, इसीलिए आज हम आपको पसूड़ी ट्रैक ही डेडिकेट करते हैं ताकि आप इस ट्रैक को एंजॉय भी करें साथ ही साथ सुने भी. और इसी के साथ साथ मुझे याद आया कि जी हाँ, मेरे पास रिक्वेस्ट भी मौजूद है जिसे हम शामिल करेंगे. लेकिन बिफोर ऑल दैट, आप तो जानते ही हैं कि हमारा सवाल होता है कि जी आपके लंच में क्या है, तो क्या पक रहा है, क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, तो व्हाट्स इनसाइड योर डब्बा. तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. अभी तक हमें रीमा ने बता दिया कि शामी कबाब हैं, रशीद खान ने बता दिया कि वो तोरी खा रहे हैं. बाकी लोगों से जानना भी बाकी है कि आप सब इस वक्त क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या मंगवा रहे हैं, या फिर कुछ सोचा है लेकिन समझ नहीं आ रहा. अच्छा, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जून जुलाई है और ये आखिरी महीना है इनकी छुट्टियों का. एंड देन पेरेंट्स विल बी सो हैप्पी कि भाई अब जो बच्चे हैं वो वापस जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और कहते हैं यार बस अब ये छुट्टियां खत्म हो ताकि जो बच्चे हैं ना अब जाए वापस स्कूल. ऐसा तो होता है वैसे, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो कह रहे होते हैं कि बस जल्दी से छुट्टियां खत्म हो और हम जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेजें, बैक टू द रूटीन बच्चे आए, क्योंकि भाई देर देर तक रात में जागना, फिर जो है वो देर तक सोना, और ये इसी वजह से जो रूटीन है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है. तो भाई आप सबके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. चलते हैं हम एक अदर ट्रैक की जाने बातें हैं वापस. ट्रैक के बाद इंतजार रहेगा जी आपके लंच का कि आपके लंच में क्या है, तो हमें जल्दी से मैसेज करें और अपना लंच हमसे शेयर करें. वी विल बी राइट बैक.

0: Yes, my friend. So I am back. और भाई ये ट्रैक रशीद खान को हमने कर दिया है डेडिकेट, क्योंकि भाई उन्होंने हमसे ट्रैक की जो थी वो रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ये ट्रैक हमें सुना दे, तो हमने कहा ठीक है जी, डील को डन करते हैं और आपको सुनाते हैं। और ट्रैक के साथ साथ जो है वो हम वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जो है वो आप लोगों के साथ जारी है। कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं इसी हवाले से हम आप लोगों तक मालूमात फरहम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है या क्या ताजा तरीन सूरत हाल है। तो भाई आज ना एक और इंटरेस्टिंग सा दिन मनाया जा रहा है जिस दिन का नाम है सच बोलने का दिन, यानी कि द वर्ल्ड ट्रूथ डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। तो टेल द ट्रूथ डे, बल्कि सॉरी आज टेल द ट्रूथ डे, यानी कि आज जो भी कहना है वो आपने सच कहना है। तो क्या आप हमेशा सच कहते हैं या नहीं, कभी कभी झूठ भी चलता है। वैसे ऐसा है कि हकीकत है कि नॉट ऑल द टाइम जो है वो लोग सच कहते हैं, कभी कभी किसी सिचुएशन से निकलने के लिए भी ना लोग झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन आई मस्ट से, ये मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि अगर आप वाकई में सच का सामना करें, सच बोलें हर हमेशा ना, तो बहुत सारी चीजों से अल्लाह पाक आपको बचा लेता है और चीजें ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अक्सर औकात हम ये कर रहे होते हैं कि जी ये बात आधी बताई या वो बताया या इससे सुना उससे सुना, और फिर होता क्या है कि अगर आप एक झूठ को बोलने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि किसी को कुछ सिचुएशन बतानी है, किसी को कुछ सिचुएशन बतानी है। तो इससे काफी बेहतर यह है कि क्यों ना सच कहा जाए। तो भाई आज का दिन तो ये कह रहा है कि आपने जो भी कहना है वो सच कहना है। तो क्या आप तैयार हैं सच कहने के लिए? तो भाई सच कहते हैं झूठ कहते हैं? वैसे हमने एक दफा एक सवाल पूछा था हमारे लिसनर्स से, तो सबने हमें बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिए थे कि नहीं भाई, नॉट ऑल द टाइम सच नहीं बोलते, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी किसी सिचुएशन से निकलने के लिए या कभी कभी छुट्टी के लिए, बहुत सारी दीगर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऐसा होता है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन वैसे ना झूठ बोलने से गुरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के दिन तो मैं आपसे ये भी कहूंगी कि जो झूठ आपने बोल दिया है और अब आपको लग रहा है कि कहीं मसा ना होना, तो जाएं और जाके सच बता दें, क्योंकि हकीकत यह है कि सच बताने से बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। तो क्या फायदा है मसलों में उलझने का? ना ना ना ना, ना। कोई मसले में ना उलझें, जाएं और जाकर सच कह दें। थोड़ी हिम्मत करें और मसले से निकलें। तो भाई आज सच बोलने का दिन है और इसी के साथ साथ कोशिश ये किया करें कि अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातों में हमेशा सच कहें, क्योंकि सच हमेशा सच होता है और झूठ जो है वो मामलात को काफी बिगाड़ देता है। तो हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठ बोल के अक्सर होता है आप भूल भी जाते हैं और फिर कोई आपको कहीं कैच कर लेता है और आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो ये था वो था। तो यही वाली बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए कोशिश करें कि जो भी कहें, सच के सिवा कुछ ना कहें। चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ, रहीम शाह की आवाज आपको सुनाते हैं और देन वी बी राइट बैक।
1: बिगारिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: Oral health ki baat Platinum Pharma ke saath. Is program ka mauzu hoga sehatmand daant, sehatmand zindagi. Program mein hamari mehman hongi Dr. Amina Tahir, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
6: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

ओके, तो रहीम शाह की आवाज को भी हमने कर लिया है शामिल. मैंने कहा चलो जी, इनके इसी ट्रैक को शामिल कर लेते हैं. और बातें करते करते आज भी दिन का कुछ पता ही नहीं चला, दिन करने वाले वक्त का कुछ पता नहीं चला. और ये वक्त जो है वो अब अख्ताम पजीर होने जा रहा है, जो कि खूबसूरत वक्त हमने आपके साथ गुजारा. तो दिस इज वेरी सैड कि अब वक्त हो चुका है खत्म. इसी के साथ साथ आज का इम्पोर्टेंट पैगाम ये है आप लोगों के लिए कि जी आप अल्लाह पाक का हर पल हर दम हर कदम शुक्र अदा किया करें. आपको पता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी में होती हैं और हम रियलाइज नहीं करते. हकीकत यह है कि सब कुछ सिर्फ पैसा नहीं होता कि जी हमारे पास पैसे हो, हमारे पास प्रॉपर्टी हो, ये हो तो बड़ी बात है. नहीं, अल्लाह पाक आपको और भी बहुत सारी मुश्किल से बचाता है, नागानी आफात से आपको बचाता है. अक्सर औकात ऐसी कुछ सिचुएशन होती हैं जो कि आप किसी को बताएं तो बड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप वो फेस करते हैं और आप उससे बासानी निकल आते हैं. तो ये सब किसकी बदौलत होता है? ये सब अल्लाह पाक की बदौलत होता है. तो इसीलिए अपनी आदत बनाएं, अल्लाह ताला का हर पल हर दम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आपको जिंदगी दी है, आपकी आंखें हैं जिससे आप देख सकते हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके पैर हैं जिनसे आप चल सकते हैं, आपकी जुबान है जिससे आप बोल सकते हैं, आपके पास जुबान है जिससे आप बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं, जायके को एंजॉय कर सकते हैं. ये तमाम चीजें भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की. तो अल्लाह पाक का हर दम हर पल हर कदम शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है और वो आपको हर मुश्किल से निकालता है. तो खुदा ताला का शुक्र अदा करने की आदत बनाएं जरूर चलते फिरते सफर के दौरान. तो अल्लाह पाक का ढेरों ढेर आपने करना है शुक्र. ये है एक अदद इम्पोर्टेंट पैगाम आज आप सबके लिए. तो जरूर करें अल्लाह ताला का शुक्र कि आप जो चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, आपको जो कुछ खरीदना होता है वो बासानी खरीद लेते हैं. तो ये सब अल्लाह पाक की बदौलत ही होता है. तो इसी के साथ साथ हम भी आपसे लेंगे इजाजत और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल. सो टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमें दीजिए इजाजत. मिलते हैं कल. अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
3: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
4: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
5: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
6: हमारी जिम्मेदारी है. खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
9: बैक टू बैक, बैक टू बैक. ओनली म्यूजिक नो आरजी टॉक. ओनली म्यूजिक नो आरजी टॉक. दिस इज FM 100.
10: Come on.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रख

0: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: कूल किंग, चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: FM 247 365.
3: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: कुकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Your location for maximum music.
1: Oral Health की बात Platinum Pharma के साथ. इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना ताहिर, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
2: 100 FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें. फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए. याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है. आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके. पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना. याद रखिए, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता. लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर ना करें. और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें. अपनी शिकायत का इंदराज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंदराज करें. व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें. इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंदराज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं. बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें. याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: facebook.com/fm247365
7: back to back only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: your location for maximum music. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM.

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना ताहिर, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: आज भी इस पे गोल, डेली लो फिट रहो।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एंड
3: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
3: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखी।
9: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 24/7/365

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This program is brought to you by
3: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
5: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
6: Let the music take control. Let the music take control. That is FM 100.

0: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: ए दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
4: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
6: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
9: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल, बट नॉट एनीमोर। Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
10: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
4: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
12: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
13: FM247365.
14: Evening drive time with DJ Casella.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
5: Higher ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inaamat dhai hazaar.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
8: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
2: This program is brought to you by
10: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
7: And agar aap hain in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
2: And
11: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
3: Let your fingers do the talking. SMS now on 3636.
4: FM 100.
3: 100. On the air at 100.
5: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
6: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
5: And
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार फाइव या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
5: And
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: Cool King.
10: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
11: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
12: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
13: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
14: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
9: कूल किंग.
12: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
15: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
16: ए दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500.
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
16: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार.
17: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
12: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
15: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
18: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी? क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: कश्मीर स्पिगोल डेली लो फिट रहो।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाए ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।
6: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
7: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
8: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: ఆశ్వేసుగోడు ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम होगी.
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें.
4: आइए वेट से आगे का सोचें.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
8: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है. साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं. इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई. महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं. हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस. हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें. PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے. لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
9: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: Broadcasting live.
11: Live across the nation.
10: Across the nation.
11: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
10: 100. I love it.
12: All right, friends, welcome back to the air. Coming in with a good number, and it's all about still choosing you as an R&B touch. A soulful vibe. So here we go.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: FM 24/7 365 FM 100।
4: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: इवनिंग ड्राइव टाइम विद

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैजकैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैजकैश है ना।
1: 100 FM। अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैजकैश।
2: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ Traffic قوانین کی پابندی کیجئے۔

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत, सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अमीना ताहिर, कंसल्टेंट एंड ओनर एट कंफर्ट डेंटल क्लिनिक कराची, बुध 8 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM247365 Legend always alive.

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Us on facebook.com/FM247365

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
0: FM 100। 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247/365

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: FM 24/7/365

0: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन

Assalamu alaikum, Pakistan. Mera naam hai Nadeem Akhtar, pyar se aap log mujhe kehte ho, aane suno. Music Twister mein main hoon aapke saath. Haribi. आपका और मेरा साथ है जनाब, एक बजे तक और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला दे गुल्ला, वो भी ओल्डी गोल्डी क्लासिक का। यानी कि आज के प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे जो ट्रैक वो होंगे पुराने और बहुत पुराने पाकिस्तानी मूवीज के। शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी भी करेंगे तो भी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब, लेकिन उससे पहले करता हूं आप लोगों को वार्म अप। तो आप जनाब इस शो में आ रहे हैं, हमारी इस महफिल में, इस अंजुमन में आ रहे हैं, तो आपको इस अंजुमन में खुशामदीद कहते हैं और ट्रैक भी कुछ अंजुमन जिसमें आता है वही सुना रहे हैं। और ये ट्रैक मेरी जानिब से आप सबके लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सोने भाई हमारी प्यारी जी मैंने फैसलाबाद से आ गई हैं। यानी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं? ढेरों दुआएं दी हैं उन्होंने, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इतनी प्यारी प्यारी सी दुआएं देती हैं आप। तमाम हसीन तरीन समातों को भी मेरी तरफ से सलाम और ढेरों दुआएं, शुक्रिया। यानी कि ये सुन रही हैं अब, हैं जी चे हैं जी। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों राज फिरते हो सर्दियों की शामों में। और अयुबा प्रेदे भाई जन आगे करे जाने चेगर ये हबीबे, इराक का पुराना नाम। और महनूर को महनूर मुश्ताक सबागुल को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। अच्छा मुश्ताक पढ़ दिया मैंने, मुश्क लिखा हुआ। महनूर को, मुश्क को, सबागुल को इन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। इनाम कह रहे हैं कि भाईजान मेरी आज 12 बजे बर्थडे है। अबे 12 बजे कौन सी बर्थडे होती है? 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा, यानी कि 7 से 8 हो जाएगी। तो 8 तारीख को मेरी बर्थडे है, 12 बजे के बाद बोलिए मेरी बर्थडे। इनाम भाई हम आपको डेडिकेट करेंगे ट्रैक और बर्थडे विश भी करेंगे। और सूफिया कैफ का सॉन्ग या साखी मेशअप सॉन्ग शेरबानो महीन और निगत के नाम कर नहीं करेंगे आज लाला लाला, आज सूफिया कैफ नहीं चल सकती। सूफिया कैफ ने जो है वो फिल्मों में गाने नहीं गाए, यानी कि समझ रही है ना आप। हैं जी दे हैं जी, तो सुने हो और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब या नहीं नहीं नहीं नहीं गाने की जानेब चलते हैं जनाब। एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है जनाब और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब की जानेब से आप सबको। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। तड़पना हमें आता है और तड़पाना भी आता है भाई, क्या बात है क्या बात है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन के बाद सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जीती रहे, मुस्कुरा दी रहे और हमेशा की तरह माशाल्लाह। नौरीन तौसीफ मेरी प्यारी सी, जवाब बता दिया है, दुरुस्त बताया है। और सवाल मैंने ये फ्लोट किया था कि आप लोगों ने बताना है कि इराक का कदीम नाम क्या है। ये नाम इस इलाके को दिया जाता था जो ठीक है, इसने तफसील, इसमें तफसील भी लिखी हुई है और मैं आपको वो तफसील बताऊंगा जरूर, मगर आखिर में, यानी कि 12:45 पर। हैं जी, ती हैं जी। और जनाब सलाम। अच्छा, थैंक्स गॉड, ट्रांसमिशन क्लियर हो गई, मैं सुन रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हुम्मा हुम्मा हुम्मा कर भैया। और आगे बढ़ते हैं। और संजू क्या कह रही हैं भाई, पहले तो इनकी दोस्त नाला ने खूब कहा जो भी कहा, और अब क्या कह रही है, एक तरफा रिश्ता, वन साइड रिलेशनशिप, वो कैफियत है जहां रिश्ते में मोहब्बत में जज्बात, वक्त और कुर्बानी

प्रतिक्रिया करें। जीबीएन मिल जाएगी। आमीन अमीन है यमीन। अच्छा अब मेरी समझ में आ रहा है। सलाम दुआ के याद हुए वो कहना दस यो कहना यार हमें सब समझते हैं यार। अब आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा है। पख्तो पख्तो समझ में आ जाएगा। आप लोग मुझे सिखा दोगे यार बिल्कुल। और जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहना भी आ गई है। जरीन नूर तुम्हारी तबीयत कैसी बताओगी जोर ठीक है। और वैसे उन्होंने तमाम सुनने वालों को मेरे वालिद साहब को और संजू को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। अहमदाबाद से हमारे फरहान भाई कहते हैं कि तमाम ही छोटे और बड़े सुनने वालों और खूबसूरत कानों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब जागते और सुनते हुए प्यारे दोस्त आफियत से और पुरसकून होंगे। तमाम ही मोहब्बत पसंद लोगों के लिए कल्बी दुआएं सदा सुकून में रहें और रहने दें। क्या बात है भाई दोनों मैसेज हो गए। ओके ठीक है। कादिर बख्श भाई भी आ गए हैं कि रहने भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम। कैसे हैं आप भाई कादिर भाई। हम बिल्कुल ओके ठीक हैं। हैं जी हैं जी। और अयूब अफरीदी कह रहे हैं जिगर आज आप अपनी पसंद का सॉन्ग गुलबानों को शेरबानों को नाम कर दो। बिल्कुल कर देंगे डोंट वरी। अच्छा जनाब आगे बढ़ेंगे मगर अभी जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। वेलकम बैक कहेंगे सुने और लेके जाएंगे आपको एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। हेलो फड़ो

मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब जो कि प्यारे प्यारे से किए हैं 3636 पर। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मोहनलाल यूके यानी कि उमरकोट से, और कह रहे हैं आज भाई चाची आपको और अबू जान को और सब सुनने वालों को सलाम। नदीम भाई मैं आपसे और अयाज भाई का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर अपनी मेमोरी कार्ड में अयाज एंड नदीम द ग्रेट के नाम से फोल्डर बनाया। हाय सो स्वीट, उसमें सेव कर रहा हूँ। जब कराची से अपने घर जाता हूँ तो अपने घर वालों को सुनाता हूँ। क्या बात है मोहनलाल, अरे मोहनलाल कैसे हो मोहनलाल। मोहनलाल को हम गाना भी डेडिकेट करेंगे। हैं जी भाई, वहां रिकॉर्डिंग हो रही है यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अमीन का ये मैसेज हो गया था टुडे, ये भी मैसेज हो गया था। लाइबा कह रही है सलाम के बाद कैसे हैं नदीम भाई। लाइबा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लाइबा तुम कैसी हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है, दोबारा रिपीट कर दूं कि इराक का पुराना नाम क्या है, ए आपने बताना है। मुझ कहती है कि बीवी और शौहर, बीवी अगर मैं आपको छोड़कर चली गई तो आपका क्या होगा। शौहर, कुछ नहीं बस पागल हो जाऊंगा खुशी से। और अनीस कह रहे हैं सलाम मैंने भाई कैसे हैं आप, और तमाम सुनने वालों को भी सलाम, और हमारे शो की जान मुश्क गुड़िया को भी सलाम। लो जी मुश्क फुल पॉपुलर हुई हुई है। और भाई आज तो गर्मी ने हद ही कर दी, बीपी ही लो हो गया था। अब आपकी प्यारी सी आवाज सुनकर कुछ तबीयत बेहतर हुई। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, गर्मी के हवाले से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, गर्मी ने वाकई बैंड बजाया हुआ है, और गर्मी ने कुछ ऐसा बैंड बजाया हुआ है कि हब्स बहुत है यार, यानी कि समझ रहे हैं ना। चले इसी बात पर हम चलते हैं एक और ट्रैक की जाने पर। ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं गुल बानो को, शेर बानो को, अयूब आफरीदी की जानिब से। अयूब भाई आपकी जानिब से एलो फड़ो।

वेलकम बैक जोयो। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, एक गाना हमने सुना तो जनाब आगे बढ़ते हैं आपके प्यारे प्यारे से मैसेजेस की जानेब। अरे क्या बात है गुफरान भैया, कैसे हैं आप?

देखो फ्रैंक भाई से बात हो रही थी, वेलकम बैक कहेंगे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्योंकि आज फिर सर्दियों की शामों में आगे बढ़ते हैं जनाब। अरे क्या बात है फरहान रजा भाई, आपने यहाँ का और नेम बिल्कुल ठीक बता दिया, यानी कि दूसरे बंदे हैं ये, पहली हमारी प्यारी सी बहन नौरिया जोशी और उसके बाद फरहान रजा भाई। फरहान रजा भाई आपका गाना चलेगा, भाभी को डेडिकेट करना तो जाहिर है चलेगा, मगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। आपने जिस गाने की फरमाइश की और जिस फिल्म का नाम दिया वो उस फिल्म का गाना नहीं है। हैं जी, हमने गाना फिर भी ढूंढ लिया। और यार नदीम भाई, कभी हमें भी कोई ट्रैक अपनी पसंद का डेडिकेट कर दिया करो। अनीस भाई मुझे पता नहीं यार आपको पसंद क्या है, आपकी पसंद का पता हो ना, मिसाल के तौर पर दो तीन गाने का ऐसी लिख कर भेजे, नदीम भाई मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। हाँ ये तो सबको पसंद है अनीस भाई, आपकी पसंद बता रहे हैं वो फरहान भाई, कॉमन पसंद है वैसे ही। आप ये बताइए वो क्या बता रहे हैं मुझे। हाँ नहीं, इनके लिए बोल रहे हैं अनीस भाई, आपके लिए बता रहे हैं ये। तो अनीस भाई आप बताएं कि गुफरान भाई ने मुझे क्या बताया होगा। ये आपके लिए सिर्फ सवाल है और किसी के लिए नहीं, कॉमन पसंद है और उन्होंने बता दिया है। अच्छा भाई नौरीन दाजी कह रही हैं कि आए हाय किस किस को बताएंगे जो

0: हाय हाय क्या फरमाइश कर दी है यार, मेरे दिल भी लग गई है। चलाएंगे चलाएंगे ये वाला, ये नौरीन तौसीफ ने फरमाइश की है मेरी प्यारी सी बहन ने, और कह रही है अपनी तस्वीर को रख सोरे। अच्छा ये मुझे हिज्जे करने पड़ेंगे, बहुत बारीक लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है। अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ मैंने ये उम्र गुजारी बड़ी तदबीर के साथ। वाह। बस अब और शेर नहीं पढ़ना भाई, शेर के ऊपर पाबंदी है। नौरीन बहना आप सुन नहीं पा रही थी लेकिन हमने शेर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, ये शेर जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़े जाएंगे जुमेरात वाले दिन। फरीन शहजादी भी आ गई है आज और कह रही है सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके सुने हो, मैं आ गई, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना, यू वेलकम वेलकम वेलकम। और शुक्रिया अदा किया है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जैन साहब ने। लाना क्या कहते हैं यार, कहते हैं जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं, जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे पास जी बी एन के सिवा कुछ नहीं। हाय गुफरान भाई आवाज आ रही है आपको, आपकी जरूरत पेश आएगी, देखिए सुने जरा कैसे हैं आप,
1: कैसे हैं आप,
0: ये सही नहीं है,
1: ये सही नहीं है,
0: जरा इसको जरा ओके कीजिए,
1: जरा ओके कीजिए।
0: अच्छा जी हाँ, इसको थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। पकसम दे बावर की गी ककुरान, पकसम द बावर की गी ककुरान, दरता रवाल रवा खलम, पकसम द बावर कहगी का कुरान, दरता रवा खलम, ए जमा द जड़े जानाना प रिश्तिया में नन याद दिगे, ए जमा द जड़गे जनाना प रिश्तिया मनन याद दिगे। भाई हमने ये पख्तू का शेर पढ़ा है तो लाला सबसे पहले आगे बताना है कि मैंने सही पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सिर्फ पढ़ा है मैंने बगैर सुने पढ़ा है, यानी कि समझ रहे हैं ना, तो बताइएगा मैंने सही पढ़ा है तो सही है फिर सुन के पढ़ेंगे। गुफरान भाई ने कोई सिंधी सॉन्ग ही बताया होगा। अनीस कह रहे नहीं सिंधी सॉन्ग नहीं बताया। उन्होंने ऐसा सॉन्ग बताया है कि हर कोई सुनता है। भाई साहबजादा साहब आ गए हैं, कैसे हो साहबजादे भाई, नदीम भाई सरकार मेरे, बस साहबजादा भाई आप भी सरकार हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। चले इसी बात पर जाएंगे एक ब्रेक की जाने।

0: Fresh FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.

वेलकम बैक कहेंगे भाई गुफरान भाई कह रहे चेक करें तो हम चेक कर रहे हैं नहीं गुफरान भाई तो गुफरान भाई जो आवाज को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर हम पढ़ते हैं कुछ जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं ऐसे ही मेरे पास तेरे सिवा जीवन कुछ भी नहीं हाँ जी कुछ बेहतर है कुछ

देख रहे हैं आप, माइक चेक हो रहा है साथ साथ। अच्छा भाई, इसी टोन में हम आपसे आपके जो है मैसेजेस भी पढ़ते रहेंगे, मगर मेरा ख्याल है इसको गुफरान भाई अभी चेक करेंगे हम कुछ ही देर में। फिलहाल जाएंगे एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जाने, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे से फरहान भाई की वाइफ को, डेडिकेट कर रहे हैं फरहान भाई की जानिब से। एलो फड़ो

वेलकम बैक एंगे किया है जो प्यार तो अहमद रशीद साहब की आवाज और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया है। भाई व्हाई यू नॉट टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप, आई एम सो हैप्पी अमेरिका इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप बट आई एम सैड फॉर क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। फरहान रजा भाई इस हवाले से क्या बात करूं, मेरा दिल दुख गया यार, आज का मैच बड़ा जबरदस्त था और फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से रोनाल्डो के हर एक का अपना अपना वो है ओपिनियन है, मगर रोनाल्डो के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसकी टीम ने किया है मेरी नजर में। तो खैर बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो बाहर हो चुकी हैं, जिसमें ब्राजील भी है और पुर्तगीज भी है, पुर्तगाल यानी कि अमेरिका भी चला गया, मैक्सिको भी चला गया। और आपको एक और बात बताऊं कि आज मैच हुआ प्री क्वार्टर फाइनल जो कि इजिप्ट और अर्जेंटीना यानी कि वर्ल्ड कप अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए वो खेल रही हैं, वर्ल्ड की नंबर वन टीम अर्जेंटीना उसका बैन बजा दिया था इजिप्ट में और दो गोल कर दिए थे और उसके बाद पता नहीं समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ कि अर्जेंटीना ने तीन गोल ऐसे किए कि क्या बात है भाई और मैच जीत गए और क्वार्टर फाइनल उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। बट मैसी जो है इसकी किस्मत बड़ी अच्छी चल रही है भाई, ये अभी दो जो मैचेस मतलब राउंड 16 का और प्री क्वार्टर फाइनल का एंड ये जो मैच हुए इनके गले गले में फंस गए थे ये मैच अर्जेंटीना के और दोनों टीमों ने इनको बहुत टफ टाइम दिया। एनीवे इस हवाले से बस यही कहूंगा रोनाल्डो जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेयर मेरा अपना जाती तौर पर और दिल बहुत दुखा था भाई मेरा। हालांकि स्पेन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्पेन बहुत अच्छा खेली थी नो डाउट अगर आप वैसे देखें तो, बट ये कि रोनाल्डो के साथ पता नहीं क्या मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ गेम खेला जा रहा है, उसके पास बॉल ही नहीं आ रही थी। ठीक है जनाब खुश हैं अब फीफा के हवाले से भी बात की है। अच्छा जी अरे भाई चाची हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात करती थी तो आज मेरी तरफ से भी एक बात तमाम न्यू जनरेशन के लिए मोहब्बत कर पर मुकद्दर से शिकायत ना कर। वाह वाह वाह वाह अनीस भाई बहुत अच्छे। अच्छा जी भी इनकी बूढ़ी होगी भाई हम भी बूढ़े होंगे अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा वसीम साहब शायर अली बग्गा का गाना नहीं चल सकता, पुराने गाने चल रहे हैं तो आप कोई ऐसी फरमाइश कीजिए कि जो हम चला भी सकें, यानी कि समझ रहे हैं ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब हमारे अनीस भाई को। तो अनीस भाई ने कहा ना मुझे कोई ट्रैक डेडिकेट नहीं हो रहा, तो अनीस साहब आपके लिए गाना एलो फड़ो

वेलकम बैक सुनियो एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हैं ओ एन ए सुनियो। म्यूजिक चूसर में मैं हूँ आपके साथ और आपका मेरा साथ है एक बजे तक और एक बजे तक सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है अपने मोबाइल के मैसेज अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए क्यू चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आज आपसे ये पूछा है कि इराक का पुराना नाम क्या है और वैसे आना फरीदा बुरानुद्दीन कह रही है थैंक्स माई स्वीट ब्रदर शानदार विश करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही साथ फरीन शहजादी कहती हैं कि इन्हें भाई लाला हमेशा आपके शो में जीवीएन का जिक्र करते हैं बड़ा गहरा ताल्लुक है लाला का उनसे। हाँ होता है बिल्कुल इंसान गहरा ताल्लुक था यू कैन से तो इंसान अपनी यादों के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। ये जिक्र जब होता है ना बहुत सारे लोगों का हम समझते हैं कि यार पता नहीं क्यों जिक्र कर रहा है यार बात ही करे जा रहा है करे जा रहा है इंसान अपने आप को हौसला दे रहा होता है और कोई बात नहीं होती। और जब चोट खाया हुआ दिल होता है ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है। फिक्की पैगे चंद तारे आंधी लोड फिक्की पैगे चंद तारे आंधी लोड गुफरान भाई तू अजे भी ना यो सजना फिक्की पै गई चंद तारे आंधी लोड। ये मलका तरन्नुम नूरजहान का गाना है यार बड़ा मशहूर वाह वाह वाह वाह। हमारी प्यारी सी अजरा शब्बीर सुन रही है और उन्होंने फरमाइश भी की अजरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद से हमें हमारी प्यारी सी चाची ज्यादा याद आती हैं। वैसे तो याद आती ही हैं यानी कि समझ रही है ना आपकी प्यारी सी दोस्त। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब अनीस भाई इतने सारे मैसेज क्या बात है। नदीम भाई 9 जुलाई को मेरे भांजी की बर्थडे है उसको भी अच्छा सा विश कीजिएगा भैया आप याद दिलाइएगा मुझे जरूर बिल्कुल करेंगे विश। और सलाम की बात कह रहे हैं यूसुफ भाई बापोज से और तमाम सुनने वालों को सलाम यूसुफ भाई। एक के बाद जब दूसरा गाना चलेगा वो हम अपनी प्यारी सी भाभी को आपकी जानिब से डेडिकेट करेंगे। और भाई सो नाइस सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट सॉन्ग लगाया बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच अनीस कह रहे हैं। और उमर बाप कहाँ गायब है मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से शो में चुड़ैल आ गई है वो डर के मारे भाग गई है। डरे मत चार्ली चैपलन है यहाँ पर ये कह रहे हैं मेरा ख्याल है अमीन। और इस तरह तो होता है भाई इस तरह के कामों में भाई आप तो जादूगर निकले आप दिलों का हाल पढ़ लेते हैं हाय। और हुस्न की देवी बूढ़ी हो गई है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं हुस्न की देवी कभी बूढ़ी नहीं होती। महबूब जो है ना उसको अपनी महबूबा हमेशा वैसी ही लगती है। अगर ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं कि जिनका वक्त साथ गुजर रहा होता है या वो देख पाते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनकी मोहब्बत में उनकी नजरों में वो कभी बूढ़ी नहीं होती वो वैसी ही रहती हैं। यानी कि समझ रहे हैं ना आप हैं जी ते हैं जी बड़ी गहरी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसी बात पर चलते हैं भाई एक और ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं लाइबा की जानिब से आप सबको। लाइबा ने कहा था ये वाला गाना चलाइएगा लाइबा आपके लिए ट्रैक एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। अच्छा जनाब, आपके मैसेजेस की जानिब जाएंगे। शुक्रिया नदीम भाई, दिल खुश कर दी ता तुसी। और मोहन लाल कह रहे हैं उमरकोट से, जबरदस्त कलेक्शन, प्लीज प्ले सॉन्ग। बिल्कुल जनाब मोहन लाल, आपके लिए गाना तो हमने चलाना ही था, अब जो गाना आपने कह दिया है उसकी कोशिश करते हैं। और एनर्जी, मैंने आपको 4 SMS किए हैं, आपने एक भी नहीं पढ़ा क्यों? सलीम बिरयानी वाले मेरे प्यारे से भाई, मेरे शहजादे, आपका कोई मैसेज मेरे सामने नहीं आया। अभी मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूं कि आपका वाकई में कोई मैसेज आया और मुझसे क्या गलती हुई है, ये सरजर्द या नहीं हुई है, तो फिर मैं कन्फर्म दिल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बोल सकता हूँ और बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आपका कोई मैसेज नहीं आया, मुझ तक नहीं पहुंचा। हो सकता है इंटरनेट की खराबी की वजह से या किसी और वजह से वो मैसेज जो है वो बेहतर तरीके से डिलीवर ना हुआ। तो हमारे प्यारे से सलीम भाई बिरयानी वाले, आपका कोई मैसेज नहीं आया, ये पहला मैसेज आया और हमने पढ़ा है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और शुक्रिया नदीम भाई। अच्छा ये भी हो गया। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है।

वेलकम बैक सोनियो भाई, पहली दफा गाया था और उम्मीद करता हूं कि बर्दाश्त किया होगा आपने। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये वाला गाना पहली दफा गाया था। तो खैर जी, आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जाने। संजू की मैसेज आ गए भाई, शुक्रन बेहतरीन गाया, सॉन्ग इंतखाब अच्छा था। और अनीस कहते हैं बहुत खूबसूरत आवाज भाई, यार आप सिंगर क्यों नहीं बने? इसलिए कि मैं सिंगर हूं नहीं। यानी कि समझ रहे ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जनाब, वक्त क्योंकि तेजी से गुजर रहा है, आपकी प्यारी प्यारी सी फरमाइशें भी हैं। और हमारे लाला कहते हैं जिगर बहुत अच्छा खाया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है यार, आप लोग पसंद कर लेते हैं। कोई अच्छा गाने वाला इंसान होगा ना तो वो कहेगा कि भाई क्या गा रहे हो भाई, क्या गा रहे हो भाई, क्या गा रहे हो। तो जनाब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा और उसके जवाब की जानिब अब हम बढ़ते हैं। और सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लोगों ने ये बताना है कि इराक का कदीम या पुराना नाम क्या है। और बहुत से लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया जिसकी मुझे बेहद खुशी हुई। और इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्रोनाउंस करने में अगर कुछ गलती हो जाए तो माजरत चाहूंगा। माशाल्लाह से बहुत ही जहीन और पढ़े लिखे लोग सुन रहे होते हैं, तो लिहाजा कोई गलती हो जाए तो माजरत। इराक का जो पुराना नाम था वो मेसोपोटामिया इसको कहते थे। और बैनुल नहरीन उर्दू में, इसको उर्दू का अगर तर्जुमा करें मेसोपोटामिया का, तो बैनुल नहरीन था। ये नाम उस इलाके को दिया जाता था जो दरियाए दजला और फरात के दरमियान में वाक़े होता था, जहां दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें जैसे सुमरी, बाबलोन, जैसे कि अभी किसी ने कहा था बाबुल या बेबलोन, ये आपने सुना होगा। ये कदीम तहजीबें जो हैं ये भी वहां पर परवान चढ़ी हैं, और आशूरी तहजीबें। तो इराक का पुराना जो नाम है मेसोपोटामिया जो है इसका पुराना नाम था। अच्छा, इससे बहुत सारी चीजें वाबस्ता हैं। बाबुल के हवाले से जो है इराक के बहुत खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के वाकयात ऐसे हैं कि अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो यकीन माने कि आपका तजस्सुस जो है वो बढ़ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिनको थोड़ा सा शौक हो तारीखी चीजों से तो वो इराक की तारीख को जरूर पढ़ें, ये बाबुल की तारीख को जरूर पढ़ें। आप इराक की बजाय बाबुल लिख दीजिए, बाबुल की तारीख क्या है, तो आपके सामने बहुत जबरदस्त किस्म के वाकयात जो है वो तारीख में जो गुजर चुके हैं और अभी भी वो वाकयात जो है वो तहरीर की सूरत में जिंदा है, और वो आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तारीखी शहरों में बेतहाशा शहर हैं। एक शहर के बारे में और भी मैं सोच रहा हूं कि वो मेरे जहन में एक शहर आ गया, हालिया शहर है वो, लेकिन वो शहर की बात कर रहा हूं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो हालिया जो शहर मेरे जहन में आया तो मैं आपसे अभी सोच रहा हूं कि वो कल उसका सवाल रख लूंगा, तो उसके बारे में फिर आपको थोड़ी सी तफसील भी बताऊंगा। और अभी मेरा दिल वैसे चाह रहा था कि बाबुल के हवाले से भी कुछ आपको बताऊं, मगर फिर वक्त जो है ना वो वाकई में फुर करके उड़ जाएगा और आप लोगों के प्यारे प्यारे से मैसेजेस वो मैं मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं पाऊंगा। खैर जी, एक और बड़ी प्यारी सी डेडिकेशन हमने करनी है। और वो डेडिकेशन है जनाब हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने ही एक फरमाइश की थी, तो नौरीन तौसीफ की फरमाइश, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और नौरीन तौसीफ की फरमाइश। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। और नौरीन तौसीफ का मैसेज आया है और उसने बहुत तारीफ की है, भाई भैया आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में यारा क्या बात है। फरहान भाई ने भी थैंक्स कह दिया है एडवांस में कि आपने गाना चलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों दांत पड़ते हो सर्दियों की शामों में। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और कुछ फरमाइशें ऐसी हैं जो कि मैंने आपकी पूरी जरूर करनी है। और जनाब आगे बढ़ते हैं और एक और ट्रैक की जानी बढ़ते हैं। और ये ट्रैक जो है ये हमारी प्यारी सी अजरा शब्बीर सुन रही हैं और उन्होंने एक ट्रैक की फरमाइश की। थोड़े से उदासी वाले गाने शुरू हो गए हैं और उम्मीद करता हूं कि पसंद आएंगे। मैंने इसलिए प्रोग्राम के आखिर में रखे हैं एलो पढ़ो।

वेलकम बैक पिगी बैग ही छह जा रहे हैं दी लोड़। तो अजय भी ना आयो सजना, ब्यूटीफुल ट्रैक है ये, पंजाबी ट्रैक है लेकिन अच्छा ट्रैक है। अजरा शब्बीर साहिबा के लिए चलाया हमने और उम्मीद करता हूँ कि उनको पसंद आया होगा। आज तो फरमाइश है यार, मैंने सबकी पूरी की है ऑलमोस्ट तकरीबन। अच्छा भाई, कुछ शिकायतें आ रही हैं लेकिन ये शिकायतें नहीं है, ये गिला है और बिल्कुल दुरुस्त गिला है। जैसे कि हमारे प्यारे से एक मैसेज मैं की जाने पहले बढ़ जाऊं और उसके बाद फिर सलीम भाई हमारे जो बिरयानी वाले हैं, उन्होंने कहा नदीम भाई मैंने चार पांच मैसेजेस किए मगर आपने एक ही शामिल किया। इसी तरह और भी बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होंगे कि जो कि मुझे मैसेजेस कर रहे होंगे मगर आप यकीन मानिए मुझ तक वो पहुंच नहीं रहे। अभी तक मैंने जितने भी मैसेजेस पढ़े, मुकम्मल मैसेजेस पढ़े हैं, जो जो आपके 3636 पर मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं। तो ये इंटरनेट का भी मसला होता है, कुछ सिस्टम का भी मसला होता है, कुछ सॉफ्टवेयर का भी होता है कि कुछ मैसेजेस आ पाते हैं कुछ मैसेजेस नहीं आ पाते। और ये जो है माजी में भी इस तरह कई बार हो चुका है। तो लिहाजा मेरे वो प्यारे प्यारे से लिसनर्स के जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया हो और उनका मैसेज वो समझ रहे हो कि रीड नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग हमारे दिलों में हैं, मोहब्बत है आप लोगों से सबसे मुझे। तो आपका मैसेज कसदन किसी का भी मैसेज मैंने ऐसा नहीं है कि रीड ना किया हो, पढ़ा ना हो, सबके पढ़े हैं मैंने, कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो मैंने ना पढ़ा हो। जो मुझ तक नहीं पहुंचे वो नहीं पढ़ सका, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और जनाब कहां गया, ये एक बड़ा प्यारा सा मैसेज था फरजाना फातिमा जहरा का एंड हिलाल शाह साहब औरंगी टाउन से मुझे सुन रहे हैं और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम भी कहा है और एक फरमाइश भी कर दी है। बिल्कुल आखिर में फरमाइश की है फातिमा आपने और हिलाल शाह आपने, जो कि मैं बहुत माजरत के साथ पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अभी पुरानी फरमाइशें ही पूरी नहीं हुई और वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की जानिब गामजन है। तो हमारे यूसुफ भाई पापोश से जो सुन रहे हैं, यूसुफ भाई आपके लिए गाना रखा हुआ है लिहाजा आपने जो है वो आखिर तक सुनना है, आपके घर वालों ने भी सुनना है, बड़ा प्यारा सा गाना है आपके लिए रखा हुआ है। फिलहाल अभी हम मोहन लाल की फरमाइश की जानिब जा रहे हैं यूके से, यानी कि उमरकोट से उन्होंने हमें फरमाइश की थी। तो मोहन लाल भाई आपकी फरमाइश एल्लो फड़ो।

पा कहेंगे सुनियो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है जो दिल में हूरों से कम नहीं। और हमारे लाला कह रहे हैं गुड नाइट शबा खैर खुदा फमान दासिकान। लाला क्या हो गया इतने सुस्त सा मैसेज कैसे आ गया? अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई रिक्वेस्ट प्ले करने का, और ये गाना भी बहुत खूबसूरत दुनिया किसी के प्यार में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अब वक्त जो है जनाब फुर्र करके उड़ गया है। अच्छा थैंक्स इन एडवांस फॉर प्ले सॉन्ग फरहान रजा आपका गाना तो कब का चल गया है? कब का चल गया तो एडवांस में थैंक्स कैसे हो गया भाई? समझ से बाहर है भैया ये बात, यानी कि समझ रहे ना। खैर जी अब आपसे चाहनी है इजाजत भी, और जाते जाते ये कहेंगे कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सवाल का जवाब तो मैं दे ही चुका हूँ, और आखिर में जो मैं ट्रैक चला रहा हूँ ये ट्रैक स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे प्यारे से यूसुफ भाई की जानिब से मिसेस यूसुफ को और उनकी फैमिली को। आपसे मुलाकात होगी जनाब इंशाल्लाह ताला कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan. Across the nation. This is-

मजबूरी थी और उसकी दानाई भी। तरके ताल्लुक मजबूरी थी और उसकी दानाई भी, वरना जाने क्या हो जाता, वरना जाने क्या हो जाता, और होती रुसवाई भी, वरना जाने क्या हो जाता और होती रुसवाई भी। तरके ताल्लुक मजबूरी थी और उसकी दानाई भी, तरके ताल्लुक मजबूरी थी और उसकी दानाई भी। देखने वाला कैसे रोके दिल को उस पर आने से, देखने वाला कैसे रोके दिल को उस पर आने से। एक उदास की, एक तो उसकी हंसी कयामत, एक तो उसकी हंसी कयामत, और उस पे गजब अंगड़ाई भी, और उस पे गजब अंगड़ाई भी। ऐन मुजस्सम करके उसको सामने किल्ला बिठलाती है, ऐन मुजस्सम करके उसको सामने ला बिठलाती है। कभी कभी तो हद कर देती है, कभी कभी तो हद कर देती है दिल की तन्हाई भी, कभी कभी तो हद कर देती है दिल की तन्हाई भी। मन आंगन में धीरे धीरे करता है जब इश्क जहूर, मन आंगन में धीरे धीरे करता है जब इश्क जहूर। धरी पड़ी रह जाती है, धरी पड़ी रह जाती है बिनाई भी दानाई भी, धरी पड़ी रह जाती है दानाई भी बिनाई भी। एक अकेला एक तरफ हो, एक अकेला एक तरफ हो और हजूम हो एक तरफ, एक अकेला एक तरफ हो और हजूम हो एक तरफ। झूठी लगने, झूठी लगने लग जाती है, झूठ ही लगने लग जाती है ऐसे में सच्चाई भी, झूठ ही लगने लग जाती है ऐसे में सच्चाई भी। सोच रहे हैं कैसे चलेगा, सोच रहे हैं कैसे चलेगा खर्चा सिगरेट चाहे का, सोच रहे हैं कैसे चलेगा खर्चा सिगरेट चाहे का। एक तो अपना कैसा खाली, एक तो अपना कैसा खाली उस पर है महंगाई भी, एक तो अपना कैसा खाली उस पर है महंगाई भी। इज्जत शोहरत मिल जाने पर नाजिश इतना ध्यान रहे, इज्जत शोहरत मिल जाने पर नाजिश इतना ध्यान रहे। जर्फ न हो तो छोटा कर देती है, जर्फ न हो तो छोटा कर देती है बहुत ऊंचाई भी, जर्फ न हो तो छोटा कर देती है बहुत ऊंचाई भी। देखने वाला कैसे रोके दिल को उस पर आने से, देखने वाला कैसे रोके उसको दिल पर आने से। एक तो उसकी हंसी कयामत, एक तो उसकी हंसी कयामत उस पे गजब अंगड़ाई भी। मन आंगन में धीरे धीरे करता है जब इश्क जहूर, मन आंगन में धीरे धीरे करता है जब इश्क जहूर। धरी पड़ी रह जाती है बिनाई भी दानाई भी। ये गजल हमने शामिल की शब्बीर नाजिश, और शब्बीर नाजिश ही नौजवान नस्ल के बड़े अच्छे इस वक्त कामयाब हमारे शोरा कराम में इनका नाम आता है, और फैसलाबाद में मेरे ख्याल में किसी शहर में यूनिवर्सिटी में बाकायदा इन पे जो है पीएचडी का भी की गई है, और इनकी शायरी पर इन पर तो बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। वक्त 1:35 हो चुकी, और एफएम इंडिया पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इस वक्त आप और हम, जी हाँ हम सब साथ हैं एफएम इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि एफएम इंडिया पाकिस्तान सिर्फ आप ही का नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का फैमिली रेडियो स्टेशन है और हम सब इसी से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वो लोग भी कि जो इसको सुनते हैं, रेगुलर सुनते आ रहे हैं, तो वो भी तो यकीन ताल्लुक चाहे सुनने का हो या सुनाने का हो, ताल्लुक बहरहाल ताल्लुक होता है, कोई गहरा ताल्लुक होता है।
کوئی ہوتا ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہوتا ہے, مگر تعلق بہرحال ہوتا ہے. کہتے ہیں ڈور سے سب بندھے ہوتے ہیں, کوئی الگ نہیں ہوتا, تو سب ایک جیسے ہیں. تو آپ سب یقیناً ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب ایک ہیں ایف ایم ریڈیو پاکستان پر, کیونکہ یہ آپ کا ہمارا سب کا فیملی ریڈیو اسٹیشن ہے. ایک اور کلام شامل کرتے ہیں شروع میں, بہت خوبصورت سا, اس کے شاعر ہیں سید علی عباس. اچھے لفظوں کو انہوں نے یکجا کیا ہے, تخلیق کیا ہے بہت خوبصورتی سے, اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کلام پسند آنا چاہیے, آئے گا, امید تو یہ ہے. تمہارے شہر کا موسم ہمیں جو مل جائے, تمہارے شہر کا موسم ہمیں جو مل جائے, ویران دل کا یہ گلشن ہمارا کھل جائے, ویران دن کا یہ گلشن ہمارا کھل جائے. نو کے خنجر محو رقصاں ہے تیرے کوچے میں, نو کے خنجر محو رقصاں ہے تیرے کوچے میں, یہ آرزو کہ کبھی تیرا دل بہل جائے, یہ آرزو کہ کبھی تیرا دل بہل جائے. کسی کو دیتے ہو قربت کسی کو تنہائی, کسی کو دیتے ہو قربت کسی کو تنہائی, خدا کرے تیرا اٹھتا شباب ڈھل جائے, خدا کرے تیرا اٹھتا شباب ڈھل جائے. ہمارا پیار نہیں عشق ہوتا یک طرفہ, ہمارا پیار نہیں ہوتا یک طرفہ, سدا بہار ہو آئے, سدا بہار ہو آئے, خزاں تو چل جائے, خزاں تو چل جائے. اسی امید پہ بیٹھے ہیں تیری راہوں میں, اسی امید پہ بیٹھے ہیں تیری راہوں میں, حوث کی دوڑ سے شاید کہ تو نکل آئے, حوث کی دوڑ سے شاید کہ تو نکل آئے, ویران دن کا یہ گلشن ہمارا کھل جائے, ویران دل کا یہ گلشن ہمارا کھل جائے. نوگے خنجر محو رقصاں ہے تیرے کوچے میں, یہ آرزو کہ کبھی تیرا دل بہل جائے, یہ آرزو کہ تیرا دل کبھی بہل جائے.

जी जनाब, सब माया है, वाकई सब माया है, इसमें कोई शक नहीं। निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा। निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा। हमें ने इश्क के काबिल बना दिया तुम्हें, हमें ने इश्क के काबिल बना दिया तुम्हें, हम ही न हूं तो नजारों का हाल क्या होगा, हम ही न हूं तो नजारों का हाल क्या होगा। हमारे हुस्न की बिजली चमकने वाली है, हमारे हुस्न की बिजली चमकने वाली है, न जाने आज हजारों का हाल क्या होगा, न जाने आज हजारों का हाल क्या होगा। बहारे हुस्न सलामत खिजा से पूछ जरा, बहारे हुस्न सलामत खिजा से पूछ जरा, कि चार दिन में बहारों का हाल क्या होगा, कि चार दिन में बहारों का हाल क्या होगा। हम अपने चेहरे से पर्दा उठा तो दें, लेकिन हम अपने चेहरे से पर्दा उठा तो दें, लेकिन गरीब चांद सितारों का हाल क्या होगा, गरीब चांद सितारों का हाल क्या होगा। निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा। हमी ने इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें, हमी ने इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें, हमी न हूं तो नजारों का हाल क्या होगा, हमी न हूं तो नजारों का हाल क्या होगा। बारे हुस्न बहारे हुस्न सलामत खिजा से पूछ जरा, बहारे हुस्न सलामत खिजा से पूछ जरा, कि चार दिन में बहारों का हाल क्या होगा। और जनाब, हमें साथ साथ ज्वाइन किया हुमा ने भी, हुमा सिद्दीकी ने भी ज्वाइन किया, कहती सलाम शोभ जी, और सुन रही हूँ आपको, थैंक यू जजाकल्ला, और मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र। और जनाब, अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक और कलाम, चलिए चार शेर और शामिल करते हैं, एक और खूबसूरत सा कलाम है, चार शेर हैं, कहते हैं कि बेसबब बात बढ़ाना

Skating VIE. Acting.

तो तुम्हें बॉक्सिंग भी आएगी, एक्टिव रहोगे तो तुम्हें स्विमिंग भी आएगी, एक्टिव रहोगे तो तुम्हें राइडिंग भी आएगी।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।